बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नोदिए के मेघट स्टीवे एफएम मेगाडी गठी उनको लंती बे मैं हुते नवारा हूं फावर वागुत को कहेंगे तो मेगाडी का कोरिया गेंदा मेगाडी के खबर तक है कि कबद को ले अड़गन शहदा महमूद एम्फुतम बलाल ने राज एक मसरूम फा को ले खबर तक की तफसीला देहास अशाविस वनाहर वाणी देहास साड़ीस वनाहर हमें दायर तरगी वेफवा गौम कर राज्य हिदुमकुरा मसकत बुड़ कामयाबी एं हासिल वेगेंदानी आहरे कम आहरक कम रेसो जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज विदाड़ वेजे मिनवंधु के रस्मी जलसा रेसो जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज वणी मि सरकारों कुरी गेंदा तरगी के मशूतक निमिदिया दे सरकारों कुरी गेंदिया मशूतक आदत हाम कुरबाफ

0: ती महाद लोबिंग मीके
1: एंता जहुरा समासा कोल्दी मसलेने मसेकते गोइजिया एने गुलाते लोबि बेनु वेजिया मशा गुलाने एंगिताने लोबावरे
2: हेंदुनु जहुरा ओफी हंगई गाडी जेहेकें एई कुरिन नुवा कमे गोंडीका जहुरा इशीनु मायकु लैला इंटकम मुंगुलाली Laila samasa koldi. Zahura hige jawabennu de.
3: Vahaka dakkabala.
2: Rinzi amurukuri.
3: Fatis vanteng hela he uluni.
2: Nasif ke vengo takkuri matlaanje huni Rinzi ya. Fona jawabunu tinumuke sababung Rinzi huri barappodang hinghamanu chayifa. नसीफ के तरीका माय को अडवहंग हुरी
3: की में मगुले में फोन उन्होंने की
2: रिंजी डुली ऐस फाइन ही
1: लाइला गुलेंता मगे फोन रिंगे नुए
2: जहुरा ए ही लाइला ही के अधिपुनी
0: जहुरा ये फोन लगी है उन्होंने कहा इब्बस खामे न करे माहम गास्तु का उन्होंने की कुरा निजी को में एक डी गुलंबी जस्टुं को ले उन्हें मुफावनी था
2: नसीफ एम फाहुम बुनी
1: वारंग उफावे मिहारो, एंगेता मिहाद मरहबा विस किए, नसीफ़ा मवागुतोंगे मैसेज बालम विस बेली, बुनी ये मैम मिहे को,
2: लाइला निकम बारंग ही के, ए वागुतो जहुरा के फोन रिंगु वाम फिशी,
1: ए मगे फिरिसोले बगुला,
2: मोबाइल लबला लाफा जहुरा बुनी